0: Ladies and gentlemen. Oh, forget it.
1: It's Bollywood.
2: मुझे खींच रही अनजानी डोर बस तेरी ओर।